लुंपा गरीब कवा खपल बची माड साता लगदा मुबारक शाजड़ खसाता ए दादर पकम किताब की दी गाखुन वोली चीचे नतरे शेर तखो गोरा अली गुला गुला कश्माली गुला गुला ताला के चमचे लगे लूबुला कश्माली गुला गुला दादर तो वेले चा दापकम किताब की दी जुलम पा गरीब का वो पल बची माड़ा साता दूसरे तो तू आएजा जमा रख को करा दो

आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बडग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: काम पे होते हैं और बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन सारा कुछ, या अगर कोई चालान हो जाता है तो फिर वो उसका जो एकामा है वो ब्लॉक हो जाता है। जब वो फिर पाकिस्तान आना चाहते हैं तो फिर जब वो बेसी चले जाते हैं और पासपोर्ट जमा करते तो फिर वो कहते हैं कि भाई इतने आपका जुर्माने, क्या ये कोई सिस्टम यहाँ हो सकते है? यहाँ जो जितने भी गाड़ी लोग चला रहे एक एक गाड़ी दस दस चार चार पांच पांच बंदों के नाम पे होते हैं ना, या इस तरह के पांच एक आदमी ने गाड़ी खरीदे दूसरों को दिए, दूसरे ने तीसरा को, तीसरा ने चौथा को, तो इस तरह ये निजाम भी है, क्या इस पे आपकी कोई फोकस है या नहीं?
1: जी बिल्कुल हो सकता है और इस पे ये पाइपलाइन पे है सोच विचार हमारी हायर
0: अथॉरिटीज,
1: हायर अथॉरिटीज हैं जो हमारी वो इस पे काम
0: कर रही है, काम किए है इस पे
1: जी, शुरू है बिल्कुल। हम इसी पे जो पॉइंट सिस्टम है ड्राइविंग लाइसेंस का, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का,
0: या परमिट नहीं है गाड़ियों
1: का, ये बिल्कुल इस पे अभी काम हो रहा है, लेकिन कुछ मसाइल हैं जो हल तलब हैं तो वो अभी इस वजह से थोड़ा मतलब पाइपलाइन में, लेकिन ये इस सोच पे अभी काम हो रहा है और इंशाल्लाह हम जा रहे हैं इस तरफ आहिस्ता आहिस्ता कि ये सारा कुछ कंप्यूटराइज हो और सेंट्रलाइज हो।
0: ठीक है जी, माजिद साहब बहुत सोच में किए हुए हैं जरा इनसे जी। तो क्या है तवील सफर के दौरान ड्राइवरों को नींद और थकन से बचाने के लिए मोटरवे पुलिस का क्या इकदाम करती है?
2: सर जो पीक तवील सफर होता है ना सर, इसमें तो एक तो वो हम जो प्राइवेट गाड़ियां हैं जो कार पे सफर कर रहे हैं
0: जी,
2: उनको तो हम ब्रीफिंग करते हैं, मुख्तलिफ टॉल प्लाजाज पे ब्रीफिंग होती है
0: जी जी।
2: इसी तरह रेडियो प्रोग्राम्स के तहत हमारा भी एक रेडियो प्रोग्राम चलता है मोटरवे पुलिस का, उस पे करते हैं। इसी तरह फेसबुक्स वगैरह में जो मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वहाँ पे लोगों को आगाही दी जाती है,
0: अभी काफी हो रहा है ना जी, मैं देखता हूँ।
2: इसके अलावा जो पीएसवीज हैं, मैं आपको इसी इलाके के सिनेरियो से बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास गिलगित से लोग आते हैं, वो कोहिस्तान का रास्ता यूज करते हैं, बशाम थाकोट एंड देन जाते हैं, तो उसमें हम ये करते हैं कि सर हमारे पास ये जो आपका कूजा बांडा है आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है
0: जी,
2: तो वहाँ पे पहले तो ये है कि वहाँ पे हमारा PSVMIS पॉइंट है, वहाँ पे हम ड्राइवर को बाहर उतारते हैं, एंटी डोजिंग एक्टिविटी के नाम से एक एक्टिविटी की जाती है, ड्राइवर का मुंह दिलवाया जाता है और हम ये कहते हैं कि जिस जहाँ पे भी सफर चार घंटे से ज्यादा का होता है वहाँ पे PSV का जो ड्राइवर्स होते हैं वो हम दो ड्राइवर्स, एक गाड़ी के ऊपर दो ड्राइवर्स होना मस्ट होते हैं। तो आज हम वैसे भी ये बताते हैं कि यार जो चार से आठ घंटे के बाद ड्राइवर चेंज किया जाए और उसके बाद ये है कि उसको रेस्ट दी जाए, जब भी गुनगुनगी चाहिए जाए तो अपना जो गाड़ी है उसको साइड हार्ड शोल्डर पे खड़ा करें, फ्रेश हो, चाय पिए, मुंह धोएं, थोड़ी सी वॉक करें और उसके बाद आगे रवाना,
0: उसके बाद
1: खास तौर पे ना ड्राइवर्स के साथ जो होस्ट होते हैं मतलब जो कंडक्टर
0: होते हैं जी जी,
1: हम उन्हें भी खूबसी ट्रेनिंग देते हैं कि और कि आप ड्राइवर पे नजर रखेंगे
0: जी जी,
1: और जो डायरेक्ट मॉनिटरिंग होती है कैमरे जो डैश कैम है उनकी एक्सेस हमारे पास भी होता है,
0: जिस तरह फ्रंट सीट में जो है ना, मैं हम जब भी सफर करता तो फ्रंट सीट पे बाकायदा लेकर होता कि फ्रंट सीट में सोना मना है
1: जी बिल्कुल, और जो वो साथ हेल्पर होता है ना उसकी भी ये ड्यूटी होता है कि वो ड्राइवर को देखता रहे, उसे एंगेज रखे और अगर वो सोने को आए तो फिर उसे वो गाड़ी रोकने का कहे और थोड़ी वॉक करने का कहे या मुंह हाथ धुला ले, हम ये भी कर रहे हैं
0: जी जी।
2: अच्छा इसमें एक और चीज ऐड कर दूं, मेरे जहन में भी आया
0: जी,
2: वो बल्कि नादर खान वो एक्टिविटी भी करते हैं, वो है एंटी डोजिंग डिवाइस की
0: जी जी।
2: हम जो पीएसवी गाड़ी है ना उनको बताते हैं कि आप एंटी डोजिंग डिवाइस रखें, वो कान पे लगाते हैं, अगर वो गुनगुनगी चाहती है जो उसका ये नेक नीचे होती है तो वो बीप करती है जिसकी वजह से ड्राइवर अलर्ट हो जाता है
0: जी जी।
2: उसके अलावा हमारा एक और इनिशिएटिव है हमारे आईजी साहब का कि हमने डैश कैम्स जो डैश मतलब गाड़ी के आगे डैश के ऊपर जो है ना बोर्ड के ऊपर एक कैमरा लगा होता
0: है, कैमरा लगा होता है,
2: वो हमने पीएसवीज को बताया कि वो इंस्टॉल करें और उसकी एक्सेस ले रहे हैं ताकि वो 24 घंटे मॉनिटर में रहे, उससे ड्राइवर की अरकात और सकनात मॉनिटर हों, जो ये फील हो

0: 130 पे कॉल करें, वहां पे ऑपरेटर को अपनी शिकायत नोट करवाएं। इसके अलावा क्योंकि आज के दौर में हर बंदा सोशल मीडिया यूज करता है, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के फेसबुक पे, ट्विटर पे और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे पेजेस मौजूद हैं, आप वहां पे अपनी शिकायत कंप्लेंट्स को दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे IGP साहब जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं उनके ईमेल्स मौजूद हैं, आप उनको ईमेल कर सकते हैं और इसके भी अलावा करना है तो आप उनको एक एड्रेस के थ्रू
1: लेटर लिख सकते हैं। जी जी जी ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी नादर साहब, रोड सेफ्टी अफिसर मोटरवे पुलिस के दबाव तो मुहकमा क्या पा
2: रही। जैसा कि माजिद अली साहब ने फरमाया कि इसमें हमारे जो महकमे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है
1: जी,
2: इस चीज में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब खुदा ना खास्ता कोई एहलकार अगर इसमें आ गया तो उसके लिए माफी की कोई गुंजाइश भी नहीं है, उसे फौरन ही जैसा कि सर ने बताया कि सिस्टम एक बना हुआ है, बंदों का सिस्टम नहीं है, प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है कि कोई ऑफिसर एक आएगा तो जाएगा सिस्टम नहीं, ये प्रॉपर सिस्टम है
1: जी जी।
2: वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उस बंदे की फिर मोटरवे पुलिस में कोई जगह नहीं,
1: कोई जगह नहीं,
2: बिल्कुल।
1: बहुत बहुत मेहरबानी सर, टाइम जो है ना वो भी तकरीबन पूरा होने वाला है, तो आखिर में रेडियो अमन बटाग्राम के जरिए हमारे सामीन खुसूसन नौजवान ड्राइवरों और मोटरसाइकिल सवारों को महफूज सफर के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं।
2: जी सबसे पहले बल्कि आखिर में अभी मैं फिर एक दफा शुक्रिया अदा करूंगा और मैं चाहूंगा कि हम आते रहें यहाँ पे, चूंकि दूर दराज इलाके हैं, हम अलाई में नहीं जा सकते, हम तुरगर बहुत दूर दराज इलाके हैं, हम वहाँ पे नहीं जा सकते, शांगला में नहीं जा सकते, लेकिन आप जरिया बने हैं हमारी आवाज उन हमारे मुअज्जिज लोगों तक पहुंचाने की और हमें खुशी है कि वो हमें सुन रहे हैं और हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी कि वो इस पे जब अमल दरामद करेंगे, अपनी जान का ख्याल करेंगे। मेरे नौजवानों से ये गुजारिश है कि ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, अपनी जान का एहसास करें, अपने वालदैन जो इन पे आस रख के बैठे हैं कि ये हमारा सहारा बनेंगे
1: जी जी।
2: तो जब ये इस तरह की हरकत करेंगे, बाइक पे चलेंगे, अपनी टांग तोड़ के बैठ जाएंगे, खुद कोमा में चले जाएंगे, तो वालदैन के लिए ये सहारा बनने की बजाय अपने वालदैन पे ये बोझ बन जाएंगे
1: जी जी।
2: तो रोड सेफ्टी के जितने भी मतलब सेशन कोई करवाना चाहे, हम स्कूलों में जाने के लिए तैयार हैं, हम कम्युनिटी हॉल्स में जाने के लिए तैयार हैं, जिधर हमें तलब करेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। तो शॉर्ट मैसेज मेरा यही है कि बाइक पे बैठें, हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करें, हेलमेट की स्ट्रिप आपने बांधी हो, ये कोई बुजदिली नहीं है कि आप समझेंगे जी हेलमेट बांध लिया तो मैं डर गया, डर हर इंसान है, मौत से कौन बहादुर है, या कोई ऐसा शख्स ये दावा कर सकता हो कि वो मौत से नहीं।
1: सर जी एक बात याद आई कि आपने ऐसा कोई बंदा देखा है कि उसने वैसा जो है ना बेल्ट नीचे नहीं बांधा है और वैसा जो है ना आप लोगों के डर की वजह से उसने वो पट्टी लगाई।
2: ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल इस तरह करते हैं कि हैंड ब्रेक में वो बेल्ट अड़ा देते हैं, तो हम उन्हें यही कहते हैं कि जी ये आप खुद को धोखा दे रहे हैं, सीट बेल्ट जो है वो आपकी अपनी सेफ्टी है, ये आपको मरने से 50% मतलब चांस आपके हो जाते हैं कि आप मरने से बच जाएं। तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करें, बाइक के साथ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें, साइड वाले शीशों का इस्तेमाल करें। अब सीट बेल्ट बांधना भी कोई बुजदिली नहीं है, या कोई ये कहे जी कि जी सीट बेल्ट बांध लिया तो उसकी ड्राइवरी जो कमजोर होगी, ऐसा कभी नहीं है। सीट बेल्ट एक सेफ्टी फीचर है, वो आपने बांधना है। इसी तरह जिस तरह आप गाड़ी के टायर के अगर नट खोल के आप चला लें तो लाजमी बात है आप खतरा मोल ले रहे हैं, इसी तरह अगर सीट बेल्ट के बगैर आप गाड़ी चलाएंगे तो वो भी आप खतरा ही मोल ले रहे हैं।
1: ऐसा कुछ लोगों को आपने चालान दी हुई है कि ये पट्टी वैसा उसने बांध है और उसने नीचे नहीं बांधा,
2: ये ना बांधने के जुमरे में ही आता है और इसको फाइन होता है।
1: तो आपको पता चलता है कि इसने सीट नहीं बांधे, ये बेल्ट नहीं बांधे,
2: प्लाजा पे जब हम होते हैं तो पता चल जाता है कि वो थोड़ा ढीला होता है, प्रॉपर नहीं नजर आता।
1: जी जी जी।
2: तो अक्सर लोग इस तरह करते हैं, खासतौर पर हाईएस्ट जो ड्राइवर्स होते हैं वो इस तरह करते हैं। फिर हम उन्हें ब्रीफ भी करते हैं कि ये आपकी अपनी सेफ्टी है, ये आप हमें नहीं खुद को धोखा दे रहे हैं
1: जी जी।
2: और आप ये देखें कि जिस तरह खुदा ना खासा जब हादसा होता है तो गाड़ी के फ्रंट शीशे से ड्राइवर बाहर जाके लगता है
1: जी,
2: वो यही वजह होती है कि सीट बेल्ट नहीं होती और मामूली सा हादसा होता है
1: के लिए होते
2: हैं। सर उसका हिट हो जाता है गाड़ी के पिलर्स के साथ, तो सीट बेल्ट हो तो कम अज कम वो छोटे मोटे हादसा में तो उसे पता भी नहीं चलता।
1: ठीक है जी, ठीक है माजिद अली साहब, आखिर में क्या पैगाम देना चाहते हो।
0: सर पैगाम तो यही है कि अपनी हिफाजत करें, लोगों की हिफाजत करें, अपने भी जान की हिफाजत करें, लोगों की भी जान की हिफाजत करें, और जिन जिन लोगों को रोड सेफ्टी की बातें पता चलती हैं वो अपने प्यारों को आगे तक पहुंचाएं। हमारे पास आपको जनरली भी बताया कि पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स है, और ह्यूमन

0: क्या आप अपने बच्चे के रोशन, महफूज और कामयाब मुस्तकबिल के लिए बटग्राम में किसी मियारी तालीमी इदारे की तलाश में हैं? तो फिर आइए स्काईहॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में, जहां तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि किरदार साजी, अखलाकी तरबियत, एतिमाद और क़ियादत की तामीर भी हमारी अव्वलीन तरजीह है। नर्सरी से लेकर FSC तक मियारी इंग्लिश मीडियम तालीम, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स के बेहतरीन प्रोग्राम, काबिल और तजरीबाकार असातिज़ा इकराम, जदीद तदरीसी तरीक़ेकार, कंप्यूटर और साइंस की जदीद लेबोरेटरियां, पुरसकून और महफूज तालीमी माहौल, तलबा व तालिबात के लिए मियारी व महफूज ट्रांसपोर्ट की सहूलत, तालिबात के लिए कॉलेज सेक्शन में अलीहदा क्लासेस का इंतजाम। यहाँ निसाबी तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों, जहनी व जिस्मानी नशोनमा और अमली तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। अपने बच्चों के बेहतर तालीम तरबियत के लिए कल नहीं आज ही तशरीफ लाइए स्काईहॉक इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम, जहां ख्वाबों को मिलती है कामयाबी की परवाज।
1: हलका दिलबरा दावली दास गड़बड़ प्रोतिये और साग दर नसीले ओड़े दे।
2: अंकल जी लकार चौकम नो बेदमशम पपाटो औजिसम में दर्द नशी दापो पर सर चिलग नाश्ता हुकम नुस्तर की राब मंदे तूरी कीगी।
1: दिलबरा न तमात न वाय ददे मसाले खो देर आसान हल दे।
2: अंकल जी हगस
1: हम उस वर्षा और द बटाग्राम हर खो मेडिकल स्टोर और जर्नल स्टोर की द ताकत पावर एक्स एनर्जी टैनिक मिलावेगी। पावर एक्स एनर्जी टैनिक खो ख्याल कवा सोक दर लबदल शरबत दर निकली और इख्तिया दहागे पहचान और नखदादा चिदयो सड़ी तस्वीर पे जोल दे और तेज मंड वही।
3: पावर एक्स एनर्जी टॉनिक, पावर एक्स एनर्जी टॉनिक कचरिस्ता सु वजूद कमजोरी भी हर वक्त बेदमाए पमखमु तिर सरी भी या दस्तर गुदलान दे तोरे हल्की भी दकीनास्तो नपस उदरे दो सरा स्तरगे तोरे तोरे के दलु लपारा इस्तेमाल क्ले पावर एक्स एनर्जी टॉनिक स्पेशल दहाग माशुमानु दपारा हम फायदा मंदे कुंची वधन कई जल जल कीगी गंदे चिप्सुना और चूरन ये खोलली भी निनुम याद साथ है पावर एक्स एनर्जी टॉनिक मेन डिस्ट्रीब्यूटर मोहसिन शाह ट्रेडर्स जेल मोल बटाग्राम दराबितेश मेरदा 0311-158-7745 बल नंबर दे 0311-84-33-878।
4: अमन का कलम पसुर बदलता रावलूंगा।
0: एक लम्हा जरा गौर से सुनिए।
4: रावलूंगा
0: कामयाबी का मियार सिर्फ दावा नहीं बल्कि नतीजा हो तो फिर नाम याद रखिए राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम। मुख्तसर अरसे में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी, शानदार नताइज, हालिया मेट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में जिला भर में पहली पोजीशन के साथ साथ 117 तलबा में 112 तलबा की A1 ग्रेड में कामयाबी। ठहरिए सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के 2 तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर में मेरिट पर दाखला। यही है मियारी तालीम की पहचान। राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता FA, FSC, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम, जदीद साइंस व कंप्यूटर लैब, जदीद लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ, छठी जमात से 12वीं जमात तक बच्चियों के लिए अलीहदा सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन के लिए तजर्बाकार फीमेल स्टाफ। वी आर राइजर्स, महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। पता याद रखिए राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज नजबैंक ऑफ खैबर बटग्राम। फोन नंबर 0356-35-207।
5: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज और रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम।

0: पूरा फैमिली शॉपिंग दपारा सिर्फ योनू अलसेद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम तासुदी दुकान
1: लो पतायात साथे अलसेद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम नीस पी एस ओपम अल फकीर शॉपिंग प्लाजा बटाग्राम
0: और पता दर नकल थीगी नसैद खालिद शाह और परवेश शाह सरा पदे नंबर और राबेता कोलिशे 0351336640 बल नंबर दे 0391 21 162 अल सईद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर द खुशालेन।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: न्यू जर्मन मेडिकल सेंटर ना तासो दो दासी मरजुनु देर खुले और बेहतरीन इलाज आगा हासिल कई और जिनको डॉक्टर हजरत हुसैन सेब के मुंगु ग्रुप होम्योपैथिक की किनन चे द्वी डेर ज्यादा तजुर्बा लरी अलहमदुल्ला से सुमर हम मरीजान द्वी कतली दावी ता देर ख और बेहतरीन रिजल्ट मिलाव शिवे देर देर ज्यात मरीजान आगा दुदी खुशी दी और ब्या हम सुमर मरीजान चे क्लिनिक तराजी अगुई दो डॉक्टर सेब ना देर ज्यात मुतमईन दी और देर ज्यात खुशहाल भी वरना हम वजह दगा चाहूम डॉक्टर सिब नखपल इलाज करे दे अलहमदुल्ला डेर खेहत मिलाव शिवे दे अगुई मरजुनु की कमे रागले दे हाग मरजुनु द पारा अगुई द मुख्तलिफ हस्पताल इलाजुन कड़ी दे अगुईता अगुई टाइम हम जय शिवे दे दग शांति पैसी हम जय कड़ी दी हो अगुई तो सेहत नो मिलाव शिवे कल हम अगुई जमुंग सेंटर तरागली दी और डॉक्टर हजरत हुसैन सिब ने अगुई खपल इलाज करे दे अल्हम्दुलिल्लाह अगुई त उम्मीद मिलाव शिवे दे अगुई त सेहत मिलाव शिवे दे नरुदन को द बड़ग्राम खल को द पारा दगा द डेर खुशकिस्मत खबर अदा चे तासी यो तजुर्बकार डॉक्टर अगस्तासु द पारा स्तासु खिदमत द पारा प बड़ग्राम के हाजिर दे तासु हम ददी द मौजूद गए ना ददी दगा द टाइम ना फायदा उचत गए पल हर किस्म मरीजान अगर तासु जमुंगा सेंटर तरावीस तले जाए इनशाला सबाब हम डॉक्टर से क्लिनिक के मौजूद भी द सहर अतो बजो नवाखला माजीगर सलोर बजो पूरे बदवी खपलो पेड़ कवि प न्यू जर कचर दे के तासु रात लगवाड़ाए और डॉक्टर हजरत हुसैन सेब ना खपल इलाज का बलगवाड़ाए सही और प्रॉपर इलाज का बलगवाड़ाए कगा मुशरान दी जमंग बाबा गान चे तासु द होम्योपैथिक यो माहिर डॉक्टर ना यो बेहतरीन और कामयाब इलाज अगर तासु तल्ला सके नॉर्दन को कमंग उगुरु द डॉक्टर हजरत हुसैन से मुंग सरा डेर ज्यात कम रजे चुकम दे अगा पाती दी नो सिर्फ और सिर्फ द्री रजी दी मुंग सरा प बटाग्राम के प न्यू जर्मन मेडिकल क्लिनिक के पाती दी यानी 29 और 30 31 दग द्री रजी दी नुस्तम रहम मरीजान दी कागुई रातल गवाड़ी बिल्कुल अगुई रातले शी प दगा द्री रजु के जगह छे ब्यावा डॉक्टर से वापसी भी ब्या बद्वी खपल चुकम क्लिनिक ते अलत की बजी खपल ड्यूटी बल तक ब्या द्वी सर अंजाम कई नो तासु कोशिश कई चिप दगा दो रजो के यानी दगा द्री रजो के तासु क्लिनिक तराशाई और द डॉक्टर हजरत हुसैन सेब ना द खपल सेहत यो कामयाब इलाज आगा तासु तरला सकाई और सुम रहम जाड़ मरीजान दी चाहुई डॉक्टर सेब न खपल इलाज शुरू कर दे अगुई खपल इलाज चुकम दे आगा कंटिन्यू करे दे द डॉक्टर हजरत हुसैन सेब ना नो अगी तो हम दगा मैसेज मंगवर को सन लग पाती हुई तासो हम कोशिश कई पल इलाज मजीद मखिता मेडिसिन चुकुम दीदा और दिन को डॉक्टर सेबरा सर हम प्रोग्राम की मौजूद दे अगी तरफ तबजू प्रोग्राम की बोर तुमगा हर कले और पखिर राले वायु डॉक्टर सेब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु हथान साहब तास्त हम दुआ सलाम द बटाग्राम जमुसोना मशरान कशरान इज्जतमन मेंदे खुएंदे दगशान अमजूरी नो टूर तजमा द तरपना दुआ और सलाम
0: डेर मनन जी थैंक यू सो मच और दिन को दग जमुंगा मुख्तरम जमुंगा काबिल खदर डॉक्टर हजरत हुसैन सेब दे चगे मुंसर दग प्रोग्राम के मौजूद दी मुंसर नास्त कवि तल्ले सुबह जो पूरी बदवी मुंसर मौजूद भी तासु हम रातले शे प्रोग्राम के मुंसर शिरकत कवले शे द टेलीफोन दिलारी दग शांति द मैसेज दिलारी कॉल बकवे मुंगता मैसेज बकवे पर 0313-878-0378 बांधी तासुर तलेशे प्रोग्राम की मुंग सरा शिरकत का वाले शे द डॉक्टर हजरत हुसैन सेब ने तासु खपल सेहत वाले सरा मालूमात अगस्तले शे वो कोशिश बकवाई संग तासु तो पत्रा जमुंग द प्रोग्राम यो पैटर्न भी तरीका भी कल हम तासु तामुंग द कॉल द पारा मैसेज द पारा टाइम रखू पागा ड्यूरेशन की बेतासु मुंग द कॉल और मैसेज कवले शे नुस्तासु कालून ब हम ब्या मुंगा प्रोग्राम की शामिल हूँ और दग शांति सासो मिसजुन चुकुम दि दाब हम ब्या मुंगा द प्रोग्राम बरख जुड़ू नो नन चुकुम टॉपिक मुंगा प्रोग्राम ता रवड़े दे कि नन च डेर ज्यात अहम दे डॉक्टर सिर्फ अक्सर मुंगा गुरु क्लिनिक त मरीजान राजी द सी पी चाइल्ड चुकुम माजूरा माशुमान भी या हुई सही न गिरजी या खबर निशी कवले दास मुख्तलिफ किस्म मसाइल माशुमान तक दिलशी कमंग उगुरु बटाग्राम पितबानी हम दास डेर ज्यात माशुमान दी चाहे वालिदैन पर खपल माशुमान हवाले से

0: ज्ञान और जिम्मेदारी के साथ। छठी जमात से बारहवीं जमात तक बच्चियों के लिए अलहदा सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के लिए तजुर्बाकार फीमेल स्टाफ। वी आर राइजर्स, महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। पता याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, नजबैंक ऑफ खैबर, बटग्राम। फोन नंबर 0356535207।
1: ستاسو اورے ریڈیو امن، ریڈیو امن، دا امن آواز ستاسو آواز۔

सलाम मामू, आप कैसे हो? मेरी माँ की दुआ दे बरदर, इसका क्या मसला है? उम्र 40 साल, चतर प्लेन से मोर पर सर दर्द भी दावा मसला भी, अल्लाह पाक दी बोले सेहत वर्गी खैर दे मोर अपना ख्याल साथ है। हॉस्पिटल ते बोझे आणि सहारे रावले तर मानता इन्शाल्ला ठीक पशी सही दा लेला लेला। सलाम वालेकुम भाई तासु सिंग है शो नाइस ताल सिस्टर ते सलाम, इट्स मी मायरा शिराजी अडेर मायरा शिराजी। सलाम वालेकुम, आई एम सुहेल खान फ्रॉम चकेसर निजाम सईद भाई, दा सॉन्ग प्ले कर प्लीज दकरा छे दरना गानो खार के खार के रुक यारा दा पले खड़ी कुसीर ने हे अल्लाह करा छे हो करा छे दा कना देवगनी सिंह तक तोरे मा और दंगे मा वाला जो पलार रवान हम कना नो पूरे बाजार नखकारी जी से गनी रा रवान दे एफएम की लहरों पर गूंज उठा है एक नाम नाजिम सैद, नाजिम सईद आपकी आवाज आई तो लगा रेडियो ने भी दिल की बात कह दी। खुश आमदीद सर, आप महफिल शुरू आपकी महफिल शुरू होती है। आए निजाम सईद साहब तशरीफ लाए, आपके आने से महफिल में बाहर आए, आपकी आवाज में जादू बातों में सच्चाई, इस शो की रौनक आपसे ही बढ़ जाती है, तुमसे मिलने की तमन्नाएं, दिल में तुम्हें पानी की दुआएं, लब पर तुम अगर साथ दो तो जिंदगी है वरना सांस लेना भी सजाए। किंग प्राप चतर प्लेन समश किंग सुषमागत मर गई तन समेगी वही थड़म पलू से पूरी वही है ना। एक आदमी स्वाद गया और जाते ही अपने बेगम को सीमेंस भेजा मगर नंबर गलत मिला दिया। जिस औरत को सीमेंस मिला उसका शहर दो दिन पहले फोत हो गया था। ये क्या लिखा है यार, शोहर अच्छा शोहर दो दिन पहले फोत हो गया था। सीमेंस बढ़ते ही औरत बेहोश हो गई, सीमेंस में लिखा था क्या लिखा था, सीमेंस में लिखा था कि मैं खैरियत से फोन किया हूँ, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत का मजा देती है, धूल मट्टी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो सफेद लिबास पहना था वो वैसे ही है, दो चार दिन तक तुमको भी बुला लूंगा। किंग प्रॉन चतर, अच्छा यानी दा खबरी दी तो खुदा जालिमा मालूम ही नहीं सुषमा जुमा गत भर गए। ताज पहन कर नहीं आता, इज्जत साथ लेकर आता है, नाजम सईद वो नाम है जो तारीफ का मुहताज नहीं। डेरा मन न धूम रो मदम का सिने चे वाह जुमा वही वाह बोलू जुमा नु ब्याह में चरते गोरे वही डेरा मन न खुशहाल हो से। सलाम वालेकुम तासु सिंह है जमाल सिस्टर ते सलाम, आई एम जोया खान नीली परी द बाणियाना, नीली परी सिफात ब्यूटी क्रीम रागली यो जले जरूर इस्तेमाल के बेचारा कस्सा भाई कसम दे तासु जनन सम खपकलमा जकमाल अखपल बचपन न दे पकार वो तासु लदी तासु मजे वापस राशि संग उम्मी इट्स मी हदीबा जस्तासु डेरा डेरा डेरा लिसनर सिस्टर यम मेरा सिस्टर हदीबा फ्रॉम बिलंकोट डेरा मन लकुम तासु
ویلکم ٹو پخیر راغلی مامو سنگے خی پروگرام تا نن وی خیم جی ایم عائشہ او کنا ودنی شی اکثر خلق بیا خوب کی تانی تکال میں

0: भाई मैंने के ना सवाल में सिंह टिक्को बिल्कुल माहिर था का शानी था जबरदस्त आओ कहना दे दे कमाल की खा बार हाल बल में इस जगह लिवाई ची इलाज के भाई लाइट भी कहने जी आई एम आयशा आयशा ना ना इलाज की लाइट नहीं था दे बल में इस जगह लिवाई ची अस्सलाम वालेकुम ताज भाई बखैर रहा ले भाई सिंह गए था सो और भाई फोर मंथ बाद में सासु प्रोग्राम वाव रे दो और सासु आवाज को ये जरूर सकुन दे भाई अच्छे दस हुए अभी आओ गेम शो जमुन दी लाइफ हिस्सा था आई मंदलीप मंदलीप बस डेरे से तो मनना था उसे चिंता गायब हुए ऐसे रोड में आजते बल्कि पूरे 120 रह से कहना बाहर हाल सा सुडेरा मंद ना खुशहाल रहा था उसे इस तरह सरबल में ऐसे चाय कर दे वही चायम नूर लेन दबानिया नबी अस्सलाम वालेकुम तासु सिंह गए ओ भाई सासु शो तजमा फर्स्ट एसएमएस दे ओ भाई जमा आल श्रेष्ठ द सलाम वालेकुम अस्सलाम डियर से तमन ना हां हां जी बल में ऐसे जगह ले बच्चे अस्सलाम वालेकुम जी ताज मामू तासु सिंह गए ओ माशाल्लाह प्रोग्राम डियर जबरदस्त थे जमा टोलो खिंदो त सलाम आई एम टोलो खिंदो त सलाम जन फीस खान अच्छा हदरानी वाला पता सु ये हदरानी वाला ना बोल सुख दे अल्लाह कना अदकाल वाले उदी दिमाना येरीगी अदकाल तो येरीगी मले तो ग्राम के फन दे तो वाले ग्राम खारी उन दा खाल वालो दा गिफ्ट बदर ना दे से में सवाल बे उसी नो बे बदुल वर को मनो बे बता सो खबा के केरे जंगले रहनक कना नो बस कॉल सुके मड़ा छपत मोले की कॉल तरद से गुरु आ मुसर कॉल का उनके सुख दी ना मत कम से रहते अस्सलाम वालेकुम
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम जनाब सु खबर को है
1: अब्दुर्रहमान
0: ओ अब्दुर्रहमान प्रोग्राम के तहर के लेस तड़े में शिप खैर आले भाई हो अब्दुर्रहमान तो सिंह गए गेम ग्रांडी का सामने मड़ा ग्रांडी देर ग्रांडी का ना जमंडा ड्राइव के देशी चीज आसान सी सब बदलेगी के ना
1: जरी सब बदलेगी
0: हम
1: अते सुन लेगी
0: आओ के ना जा आसान गेम नहीं मड़ा लो सोचो तो कहो के ना इंसान ना कर लेती खा जा बिल्कुल जान रेडी कर रेडी जब इन लफ्ज़ों ने वायम सही दम माउस कीबोर्ड मॉनिटर कैमरा ओबर
1: आवाज
0: रहा कट से हां जो भी हो माउस कीबोर्ड मॉनिटर कैमरा ओबर
1: माउस
0: मॉनिटर कीबोर्ड ओबर आए मखिर तो अरे मंदने को रहमान खुशहाल रहो तो से जो के बेला हाफिज मेरे को ज्यादा मुसरफ अब्दुल रहमान ने फ्रॉग के कॉल को दे दिया था मंदना आए हद वाले तो मकरान दे तुम ग्रान खन दे बस तो वाली ग्रान लगी मना मतलब दिमाग कमजोरी दी के ना दिमाग कमजोरी दी के ना मत दिमाग कमजोरी कारी सासो आए रब्बा

अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। क्या आप सिर्फ एसएमएस में सिर्फ सलाम लिख रहे हैं और कुछ नहीं लिख रहे? बहरहाल बहुत शुक्रिया। दिन लवाबल में से चाह कर रहे भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खास सिंह है बिल्कुल ठीक ठाक है मैम। वो सवाल जवाब दे ना, देखा